ही गई माफी का मागी ले झुझुई किरा कहाँ मुहिले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहु माता ढोकी दे जन्म बापला तेरो आनी तो करना दुई तो धमको भतुआ।

0: चरीकोट बीच बजार भेटेरिनरी अस्पताल अगाडी।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

इसा को गोली आजु भंडा भोले साई नरे आशा जीवना को कती के बोड़ी साथी

गाड़ी लाई दाम दी मलाई सामजी सामजी कल पाने नारो नो तमाको ताऊ मेरे बुबा बाऊ समझे समझे नारो नो चितुर कागज कालो कलम सी पैलरे अछरी बाई मात्र

दूर। बिजुली बत्ती सैलोंग एफएम जाती सबाए जानलाई नमस्कार। दाम पैसा गने मैले यति भने सबाए जानलाई नमस्कार। भातैर पाको रुदु होइन गुदु यति हुन त पगुमान।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बयान थोप्लो सात मेगाहर्जबाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्वत 2083 साल आषाढ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 14 तारीख आषाढ 30 गते मंगलबार औंसी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पे भरी।

सारी छया हुन राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परेका घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस सुत सहित।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर।
2: जय गाडे सा जय गाडे सा देवा, जय गाडे सा जय गाडे सा देवा, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है। आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे। जय गाड़े सा जय गाड़े सा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव। हरि हरि सधैं भारी भक्ति गरौं है, हरि हरि सधैं भारी भक्ति गरौं है।